0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो साइट
2: अहिले बिहानको 6 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98163 95301
4: काया कैरन का साथ में
5: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
4: राष्ट्र कुसान किसान
5: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युशन्स
6: काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबर का शीर्षकहरूबाट
7: बाढ़ी पहिरो का कारण क्षतिग्रस्त भएका धेरै सड़क संचालन पछि जनजीवन सहज नेपाल र चीनबीच का प्रमुख व्यापारिक नाका ठप्प हुँदा दशैं बजार प्रभावित
6: मतपत्र छपाईमा ढिलाई हुँदा कांग्रेस महाधिवेशन लम्बियो नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा सक्रिय हुनु नैतिक रूपमा कमजोर भएको विश्लेषकको भनाई
7: दशैंको चहल पहल शुरू भएसँगै मासुका लागि पशुपक्षी औसार पसार तीव्र रोग तथा संक्रमणलाई ख्याल गरी ढुवानी मापदण्डको पालना गर्न पशु सेवा विभागको आग्रह
8: सानो किसान होस् अथवा व्यापारी होस् उहाँहरूले चाहिँ पशु ढुवानी मापदण्डको विषयमा बुझ्नु पर्यो र त्यसमा भएका व्यवस्थाहरू सकेसम्म हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ
6: एआई प्रविधिमा बढ़दो लगानीले यस वर्ष विश्वव्यापी व्यापार बढ़ने डब्ल्यूटीओ को प्रक्षेपण एशियाको वस्तु निर्यात 9.9% बढ़ने अनुमान
7: र श्रीलंका का पूर्व क्रिकेटर धम्मिका फेरि एनपीएल का लागि विराटनगरको प्रशिक्षक

0: दिल्ली मेडिकल को बीच में दुले घोड़ा
1: प्रोपाइटर सुबील श्रेष्ठ किम नारायण श्रेष्ठ मोबाइल 9846656999 छ।
2: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।

0: This is Radio Dhorbarahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Lightcheck.
2: Aile, Diuso ko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301
4: Camera is standby. Reload music.
5: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: यंगी गोइला येनो
1: कानुंग रोस मामेकी
2: ए मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिले मामु
0: यंगी रिमठिम डिंगी जो फन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयासकी
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्ट लाफा को केरसे की मुझनी है।

टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।